0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो चौदहवें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। अपने विगत प्रसारण के अंत में हमने वर्तमान के धर्म सिद्धांतों की चर्चा करते हुए कहा कि अपने सामाजिक विश्व पत्र कारितास इन वेरितास में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने वैश्वीकरण के आलोक में पॉपुलरुम प्रोग्रेसियो की विषय वस्तु में हुए विकास का मूल्यांकन करते हुए उन्हें विस्तृत करने की चाह रखी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास का अभिप्राय सच्ची तरक्की, हर किसी को लाभ और वास्तविक टिकाऊपन से है। कहने का अर्थ, आर्थिक विकास सही अर्थ में सबों को सम्मानित करता और सृष्टि की सीमाओं का सम्मान करता हो। श्रोताओं, संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने करुणा को अपने विश्लेषण के केंद्र बिंदु में यह कहते हुए रखा कि यह कलिसे के सामाजिक धर्म सिद्धांत का हृदय है, बशर्ते कि यह सदैव सत्य से संयुक्त हो। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि हम अपने बीच में नैतिक आवश्यकताओं के भाव को अपने से दूर करते हैं, विशेषकर सामाजिक, संवैधानिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के अंदर। उनकी बातों की वास्तविकता इस बात पर आधारित है कि विकास, न्याय, संस्थाने और बाजार अपने में तटस्थ वास्तविकताएं नहीं हैं, बल्कि वे स्थल हैं जहां असल में करुणा को ऐतिहासिक रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। यह शिक्षा आज खासकर बढ़ती हुई असमानता, वित्तीय बाजार में दबाव, पर्यावरण संकट और राजनीति में विकास की कमी के आलोक में महत्वपूर्ण है। यह विकास की हर शैली का मूल्यांकन करने हेतु एक निमंत्रण देता है कि वह कितना समावेशी और टिकाऊ है। साथ ही यह आम भलाई के आधार पर अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच के रिश्ते को फिर से बनाने और सार्वजनिक जीवन में करुणा की तर्कपूर्ण और रचनात्मक भूमिका को स्वीकारने का भी आह्वान करता है। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस की सामाजिक शिक्षा का विकास गौडियम एट स्पेस के संदर्भ में होता है, जो हमें इतिहास को मानवीय आशाओं और संवेदनशीलताओं के आधार पर देखने का निमंत्रण देता और उन्हें सुसमाचार के संग वार्ता करने हेतु लाने की मांग करता है। यह शैली विशेष रूप से एवंजेली गौडियम में स्पष्ट रूप से निकल कर आती है, जहां वे इस बात को घोषित करते हैं कि ख्रिस्तीय घोषणा कलिसिया का एक आंतरिक सामाजिक आयाम है, जो उन्हें गरीबी, प्रवासियों और किसी भी नए रूप में गुलामी के शिकारों की पुकार को सुनने का आह्वान करती है। संत पापा फ्रांसिस एक सिनोडल कलिसिया के बारे में जोर देते हैं, एक कलिसिया जो एक साथ चलती है, जो समय की निशानियों को सुसमाचार के आलोक में देखती और अपने को दरिद्रों द्वारा सुसमाचार का प्रचार करने देती है, जिसके द्वारा वह अपने इतिहास को साझा करती है, साथ ही उस परिदृश्य में अपने को सुलभ पाती है। श्रोताओं,

हमारे लिए सुदृढ़ता में इस बात पर जोर देती है कि पृथ्वी की पुकार और गरीबों का रुदन अपने में अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसके आलोक में चीजों के सार्वभौमिक उद्देश्य को प्रमुखता दी गई, साथ ही उस तकनीकी प्रधान सोच की भी आलोचना की गई जो हर चीज को केवल नियंत्रण करने की वस्तु मानती है। बर्बादी वाले सोच से खतरे में पड़ी इंसानी मेहनत का बचाव किया गया और पीढ़ियों के बीच न्याय की जरूरत पर जोर दिया गया। अंत में उन्होंने उन लोगों के मध्य सच्ची वार्ता की बात सुझाई जो राजनीति और वित्त के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिससे कोई भी अपने को संदर्भित ना करे। श्रोताओं, सामाजिक ताने बाने के टूटने की स्थिति में एक विश्व युद्ध जो टुकड़ों में लड़ा जा रहा है, व्यक्तिगत वैश्वीकरण और समुदायों में महामारी के प्रभाव की स्थिति में संत पापा फ्रांसिस ने अपने विश्व पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती में एक मानवता के सपने को पुनर्जागृत करने की चाह रखी जो सामाजिक मित्रता और वैश्विक भ्रातृत्व का चुनाव करती है। उन्होंने एक मिलन की संस्कृति का सुझाव दिया, एक बेहतर राजनीति जो सबों के लिए हित की चाह रखती हो, जो मेल मिलाप के मार्गों का चुनाव करती और एक ऐसी दुनिया को सुनिश्चित करती हो जिसमें सबों के लिए जमीन, निवास स्थल और रोजगार प्राप्त होता हो। अंततः दिल एक्सित नोस में उन्होंने यह व्यक्त किया कि ये सारी विशेष प्रयास यीशु ख्रिस्त के संग हमारे व्यक्तिगत संबंध को अलग नहीं कर सकते हैं। ईश वचनों की ओर अभिमुख होते हुए उन्होंने हमें याद दिलाया कि यीशु के हृदय के प्रति सच्चा प्रेम हमारे लिए अपने भाई बहनों को ठोस रूप में प्रेम करने में अभिव्यक्त होता है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से देने की अपेक्षा हमारे लिए और कोई बड़ा मार्ग नहीं है। श्रोताओं, इस पूरे ऐतिहासिक परिदृश्य पर चिंतन करना यह स्पष्ट करता है कि कलीसिया की सामाजिक धर्म सिद्धांत मेज में बैठे हुए एक परियोजना का प्रतिफल नहीं है, बल्कि यह एक धैर्यपूर्ण प्रक्रिया की उत्पत्ति है जिसमें हर परम धर्माध्यक्ष ने द्वितीय वैटिकन महासभा के संग नई चीजों के संबंध में हर विशेष अवधि में अपनी ओर से एक विशेष सहयोग प्रदान किया है। उनके समय की चुनौतियों के संबंध में हर एक ने ऐतिहासिक परिवर्तनों को सुसमाचार के अनुरूप परिभाषित करते हुए एक विरासत की विभिन्न बातों को प्रकाश में लाया। मानव का सम्मान, कार्य का मूल्य, चीजों का वैश्विक लक्ष्य, एकता और पूरकता, सृष्टि की देखरेख और शांति तथा भ्रातृत्व की महत्वपूर्णता, इसके परिणाम स्वरूप हम एकतामय विकास को पाते हैं, यद्यपि यह सदैव सीधा नहीं होता है, जो विभिन्न बातों, प्रगतिशील विचार और कभी कभी दृष्टिकोणों में परिवर्तन पर जोर देता है, जो उन बातों को नहीं तोड़ता जो पहले से आती हैं, लेकिन उनके नतीजों को पूरी तरह सामने आने देता है। अगर आज हम एक शरीर के कुछ साझा सिद्धांतों और मापदंडों की बात कर सकते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास की इस आस्था आधारित व्याख्या में कभी कोई रुकावट नहीं आई और यह हर पीढ़ी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा खुली रही है। यह सामाजिक धर्म सिद्धांत का वृहद सिद्धांत है जो विश्वासियों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आत्म मंथन को दिशा निर्देशित करती है। और अब मैं अपना ध्यान इस ओर लगाना चाहता हूँ, संत पापा कहते हैं, ताकि हम अपने आपसी तालमेल और हमारे समय की दिशा देने की उसकी क्षमता को बेहतर ढंग से समझ सकें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरित पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 1 अक्टूबर को रोम के पल्लियों और स्कूलों के 700 से 1000 बच्चे वैटिकन उद्यान में पोप लियो 14वें के साथ एकत्रित होंगे। ए टू द चर्च इन नेट की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उस शाम 5 बजे वैटिकन के लूथ ग्रोटो में बच्चे और पोप दुनिया भर के बच्चों, परिवारों, स्कूलों और ख्रिस्त समुदायों के साथ आध्यात्मिक रूप से एकजुट होंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय से परमधम पीठे फाउंडेशन ACN इस प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि पहली बार 1 मिलियन बच्चे रोजरी विनती करते हुए पहल 1 से 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिससे समुदायों, परिवारों और स्कूलों को अपनी पसंद का दिन चुनने का मौका मिलेगा। इस दौरान हर समुदाय शांति और एकता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में एक साथ आएंगे। 7 अक्टूबर रोजरी की माता मरियम का पर्व दिवस इस सप्ताह का चरम बिंदु होगा। बोलिवियन अमेजन के आदिवासी समुदायों से लेकर सूडान, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक और युद्ध, गरीबी एवं अस्थिरता से प्रभावित कई दूसरी जगहों की कलीसियाएं भी प्रार्थना अभियान में शामिल होंगी। जिम्बाब्वे के बुलावायो महाधर्म प्रांत में सेंट क्रिस्टोफर पल्ली 4 अक्टूबर को बच्चों को शांति के लिए प्रार्थना में शामिल होने के लिए इकट्ठा करेगी। इस साल की यह पहल पुर्तगाल के फातिमा में 3 बच्चों को माता मरियम के दिव्य दर्शन के दौरान मिले संदेश से प्रेरित है। अंत में मेरा बेदाग दिल ही जीतेगा। भाग लेने वालों को दिए गए एक निमंत्रण में CAN इंटरनेशनल के अध्यक्ष और ख्रिस्ती एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल कूट कोच ने बताया कि कैसे मरियम का निष्कलंक हृदय पौत्र आत्मा के लिए पूरी तरह से खुले जीवन को दिखाता है, और उन्होंने मरियम को विश्वास, प्रार्थना और प्यार का एक उदाहरण बताया। खासकर आज की दुनिया में जब हिंसा, जुल्म, गरीबी और अस्थिरता है, यह पहल बहुत जरूरी है। अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करते और अलग अलग संस्कृति में रहने वाले बच्चों की तस्वीरें भरोसे और आशा का एक सरल लेकिन विश्वव्यापी प्रतीक है। 1 लाख बच्चे रोजरी माला विनती करते हुए पहल 2005 में वेनेजुएला में शुरू हुई थी, और यह हर महाद्वीप में बच्चों, परिवारों, पल्लियों, स्कूलों और कलीसियाई दलों के साथ एक विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क बन गई है। इटली के संत पादरे पियो के कथन ने इस पहल को प्रेरित किया है। जब 1 मिलियन बच्चे रोजरी की प्रार्थना करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। हालांकि प्रार्थना का आह्वान सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। ए टू द चर्च इन नीड ने सभी माता पिताओं, शिक्षकों, पुरोहितों, धर्म संघियों, प्रचारकों और परिवारों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। ए टू द चर्च इन नीड जोर देता है कि अगर पूरी रोजरी विनती करना संभव ना हो तो कम से कम एक भेद ईमानदारी पूर्वक करने से भी इस वैश्विक प्रार्थना श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं। शांति में निवेश करना हर एक के लिए, हर जगह, हर दिन, यह संदेश तोम्बुरा यांबियो के धर्माध्यक्ष बिशप बर्नी एद्वार्डो हिबोरो कुसाला का है, जिन्होंने सूडान और दक्षिणी सूडान के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के मौके पर संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। सूडान और दक्षिणी सूडान के कातिल धर्माध्यक्ष सम्मेलन के न्याय एवं शांति आयोग के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष बर्नी एद्वार्डो हिबोरो कुसाला ने विदेश एजेंसी को भेजे एक बयान में लिखा, शांति सिर्फ युद्ध न होने से कहीं अधिक है। इसके लिए न्याय, समानता, सुरक्षा, मेल मिलाप और भरोसा फिर से बनाने की हिम्मत चाहिए। हमारे लोग बहुत लंबे समय से घाव सह रहे हैं, लेकिन हमारे घाव हमारे इतिहास का हिस्सा है। शांति वह विरासत है जो हमें अपने बच्चों के लिए छोड़नी चाहिए। यह संदेश उन लोगों के अनुभव से निकला है जो संघर्ष, विस्थापन, दर्द और डर से जूझ रहे हैं, लेकिन धर्माध्यक्ष इस बात पर जोर देते हैं कि वे उम्मीद जारी रखे हैं। इसलिए वे हिंसा के शिकार लोगों, विस्थापित परिवारों, शरणार्थियों, डर में बड़े हो रहे बच्चों और उन लोगों के लिए खास प्रार्थना करने का निमंत्रण देते हैं जो अभी भी संघर्ष के घावों को झेल रहे हैं। सूडान और दक्षिण सूडान के इस नाजुक समय में धर्माध्यक्ष हिबोरा समाज के सभी लोगों, राजनीतिक नेता, नागरिक, धर्म संघी और पारंपरिक अधिकारी, महिलाओं और युवाओं को संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, हमारी विविधताएं कभी भी हिंसा का कारण ना बने। झगड़े की जगह बातचीत होनी चाहिए और जनता के अधिकारों को आम भलाई के लिए काम करना चाहिए। उनकी अपील चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी है, जिसके लिए दोनों देश तैयारी कर रहे हैं।
धर्मदक्ष कहते हैं, हर नागरिक की प्रतिष्ठा एवं अधिकारों का सम्मान किया जाए और राजनीतिक हिस्सेदारी शांतिपूर्ण और डर धमकी एवं हिंसा से मुक्त होने की अपील करते हैं। वे आगे कहते हैं, राजनीतिक असहमति से कभी भी किसी पड़ोसी को दुश्मन नहीं बनानी चाहिए। अडोम्बुरा यांबियो के धर्मदर्श ने खासकर युवाओं से नफरत को अस्वीकार करने के लिए कहा है। समुदायों और विविधताओं के बीच पुल बनाने, हिंसा के बजाय शिक्षा, विश्वास, सेवा और मेल मिलाप करने की सलाह दी है। बिशप हिबोरो ने सूडान और दक्षिणी सूडान के लोगों और शांति निर्माण के लिए समर्पित सभी लोगों को ईश्वर का भरोसा दिलाया है। ईश्वर दुखी लोगों को आराम दें, घायलों को चंगा करें, दुर्बलों की रक्षा करें, हमारे नेताओं को समझाएं और न्याय, मेल मिलाप एवं शांति के लिए काम करने वाले सभी लोगों को मजबूत करें। धर्मदक्ष ने अंत में कहा, सूडान को शांति मिले, दक्षिण सूडान को शांति मिले, अफ्रीका को शांति मिले, आइए हम वहीं से शुरू करें जहां शांति शुरू होती है। ईश्वर हमें अपनी शांति के माध्यम बनाएं। पोप लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरित यात्रा से पहले वैटिकन मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में फ्रांस के प्रेरित राजदूत महाधर्मदर्श सेलेस्टिनो मिलियोरे ने कहा कि पोप की यात्रा से देश में ख्रिस्ती धर्म की फिर से खोज और येसु ख्रिस्त में दिलचस्पी बढ़ेगी और द्विधा में पड़े यूरोप को एक मजबूत संदेश जाएगा। एक ख्रिस्तीय जीवन की खूबसूरती को फिर से खोजा जा रहा है, एक ऐसा ख्रिस्तीय जीवन जो ना तो सस्ता है ना ही कमजोर, बल्कि जिसे उसकी पूरी जड़ एवं गहराई के साथ अपनाया गया है। वैटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में फ्रांस के प्रेरित राजदूत महाधर्मदर्श सेलेस्टिनो मिलियोरे ने देश में विश्वास के नवीनीकरण को कुछ इस प्रकार बताया। राजदूत ने फ्रांसीसी लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन उम्मीद के बड़े संकेतों की ओर भी इशारा किया, जिसमें फ्रांस की कलीसिया भी शामिल है। उन्होंने यूनेस्को में पोप के भाषण, रॉबर्ट शुमन के शहर मेट्स में उनके रुकने और सबसे बढ़कर उनकी इस उम्मीद के महत्व पर चर्चा की कि यह यात्रा येसु ख्रिस्त और सुसमाचार की शक्ति में इस दिलचस्पी को मजबूत करने में मदद करेगी और इन संकेतों को एक गहरी एवं स्थायी कार्तिक जागृति में बदल देगी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा लियो चौदहवें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। अपने विगत प्रसारण के अंत में हमने वर्तमान के धर्म सिद्धांतों की चर्चा करते हुए कहा कि अपने सामाजिक विश्व पत्र कारितास इन वेरितास में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने वैश्वीकरण के आलोक में पॉपुलरुम प्रोग्रेसियो की विषय वस्तु में हुए विकास का मूल्यांकन करते हुए उन्हें विस्तृत करने की चाह रखी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास का अभिप्राय सच्ची तरक्की, हर किसी को लाभ और वास्तविक टिकाऊपन से है। कहने का अर्थ, आर्थिक विकास सही अर्थ में सबों को सम्मानित करता और सृष्टि की सीमाओं का सम्मान करता हो। श्रोताओं, संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने करुणा को अपने विश्लेषण के केंद्र बिंदु में यह कहते हुए रखा कि यह कलिसे के सामाजिक धर्म सिद्धांत का हृदय है, बशर्ते कि यह सदैव सत्य से संयुक्त हो। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि हम अपने बीच में नैतिक आवश्यकताओं के भाव को अपने से दूर करते हैं, विशेषकर सामाजिक, संवैधानिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के अंदर। उनकी बातों की वास्तविकता इस बात पर आधारित है कि विकास, न्याय, संस्थाने और बाजार अपने में तटस्थ वास्तविकताएं नहीं हैं, बल्कि वे स्थल हैं जहां असल में करुणा को ऐतिहासिक रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। यह शिक्षा आज खासकर बढ़ती हुई असमानता, वित्तीय बाजार में दबाव, पर्यावरण संकट और राजनीति में विकास की कमी के आलोक में महत्वपूर्ण है। यह विकास की हर शैली का मूल्यांकन करने हेतु एक निमंत्रण देता है कि वह कितना समावेशी और टिकाऊ है। साथ ही यह आम भलाई के आधार पर अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच के रिश्ते को फिर से बनाने और सार्वजनिक जीवन में करुणा की तर्कपूर्ण और रचनात्मक भूमिका को स्वीकारने का भी आह्वान करता है। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस की सामाजिक शिक्षा का विकास गौडियम एट स्पेस के संदर्भ में होता है, जो हमें इतिहास को मानवीय आशाओं और संवेदनशीलताओं के आधार पर देखने का निमंत्रण देता और उन्हें सुसमाचार के संग वार्ता करने हेतु लाने की मांग करता है। यह शैली विशेष रूप से एवंजेली गौडियम में स्पष्ट रूप से निकल कर आती है, जहां वे इस बात को घोषित करती हैं कि ख्रिस्तीय घोषणा कलिसिया का एक आंतरिक सामाजिक आयाम है, जो उन्हें गरीबी, प्रवासियों और किसी भी नए रूप में गुलामी के शिकारों की पुकार को सुनने का आह्वान करती है। संत पापा फ्रांसिस एक सिनोडल कलिसिया के बारे में जोर देते हैं, एक कलिसिया जो एक साथ चलती है, जो समय की निशानियों को सुसमाचार के आलोक में देखती और अपने को दरिद्रों द्वारा सुसमाचार का प्रचार करने देती है, जिसके द्वारा वह अपने इतिहास को साझा करती है, साथ ही उस परिदृश्य में अपने को सुलभ पाती है। श्रोताओं, लौदातो सी में संत पापा फ्रांसिस पर्यावरण की सुव्यवस्थित देखरेख हेतु एक प्रथम विशेष सामाजिक विश्व पत्र प्रस्तुत करते हैं। वे हमें यह दिखलाते हैं कि यह कोई अलग विषय वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे समकालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था के संकट का पारिस्थितिकी पहलू है। पारिस्थितिकी की संपूर्णता, जो हमारे सामान्य निवास की देखरेख से संयुक्त है, जहां हम विशेषकर अपने लिए गरीबों के विकल्प को पाते हैं, हमारे लिए सुदृढ़ता में इस बात पर जोर देती है कि पृथ्वी की पुकार और गरीबों का रुदन अपने में अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसके आलोक में चीजों के सार्वभौमिक उद्देश्य को प्रमुखता दी गई, साथ ही उस तकनीकी प्रधान सोच की भी आलोचना की गई, जो हर चीज को केवल नियंत्रण करने की वस्तु मानती है। बर्बादी वाले सोच से खतरे में पड़ी इंसानी मेहनत का बचाव किया गया और पीढ़ियों के बीच न्याय की जरूरत पर जोर दिया गया। अंत में उन्होंने उन लोगों के मध्य सच्ची वार्ता की बात सुझाई जो राजनीति और वित्त के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिससे कोई भी अपने को संदर्भित ना करे। श्रोताओं, सामाजिक ताने बाने के टूटने की स्थिति में एक विश्व युद्ध जो टुकड़ों में लड़ा जा रहा है, व्यक्तिगत वैश्वीकरण और समुदायों में महामारी के प्रभाव की स्थिति में संत पापा फ्रांसिस ने अपने विश्व पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती में एक मानवता के सपने को पुनर्जागृत करने की चाह रखी, जो सामाजिक मित्रता और वैश्विक भ्रातृत्व का चुनाव करती है। उन्होंने एक मिलन की संस्कृति का सुझाव दिया, एक बेहतर राजनीति जो सबों के लिए हित की चाह रखती हो, जो मेल मिलाप के मार्गों का चुनाव करती और एक ऐसी दुनिया को सुनिश्चित करती हो जिसमें सबों के लिए जमीन, निवास स्थल और रोजगार प्राप्त होता हो। अंततः दिल एक्सित नोस में उन्होंने यह व्यक्त किया कि ये सारी विशेष प्रयास यीशु ख्रिस्त के संग हमारे व्यक्तिगत संबंध को अलग नहीं कर सकते हैं। ईश वचनों की ओर अभिमुख होते हुए उन्होंने हमें याद दिलाया कि यीशु के हृदय के प्रति सच्चा प्रेम हमारे लिए अपने भाई बहनों को ठोस रूप में प्रेम करने में अभिव्यक्त होता है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से देने की अपेक्षा हमारे लिए और कोई बड़ा मार्ग नहीं है। श्रोताओं, इस पूरे ऐतिहासिक परिदृश्य पर चिंतन करना यह स्पष्ट करता है कि कलिसे की सामाजिक धर्म सिद्धांत मेज में बैठे हुए एक परियोजना का प्रतिफल नहीं है, बल्कि यह एक धैर्यपूर्ण प्रक्रिया की उत्पत्ति है, जिसमें हर परम धर्माध्यक्ष ने द्वितीय वैटिकन महासभा के संग नई चीजों के संबंध में हर विशेष अवधि में अपनी ओर से एक विशेष सहयोग प्रदान किया है। उनके समय की चुनौतियों के संबंध में हर एक ने ऐतिहासिक परिवर्तनों को सुसमाचार के अनुरूप परिभाषित करते हुए एक विरासत की विभिन्न बातों को प्रकाश में लाया। मानव का सम्मान, कार्य का मूल्य, चीजों का वैश्विक लक्ष्य, एकता और पूरकता, सृष्टि की देखरेख और शांति तथा भ्रातृत्व की महत्वपूर्णता, इसके परिणाम स्वरूप हम एकतामय विकास को पाते हैं, यद्यपि यह सदैव सीधा नहीं होता है, जो विभिन्न बातों, प्रगतिशील विचार और कभी कभी दृष्टिकोणों में परिवर्तन पर जोर देता है, जो उन बातों को नहीं तोड़ता जो पहले से आती हैं, लेकिन उनके नतीजों को पूरी तरह सामने आने देता है। अगर आज हम एक शरीर के कुछ साझा सिद्धांतों और मापदंडों की बात कर सकते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास की इस आस्था आधारित व्याख्या में कभी कोई रुकावट नहीं आई, और यह हर पीढ़ी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा खुली रही है। यह सामाजिक धर्म सिद्धांत का वृहद सिद्धांत है, जो विश्वासियों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आत्म मंथन को दिशा निर्देशित करती है। और अब मैं अपना ध्यान इस ओर लगाना चाहता हूँ, संत पापा कहते हैं, ताकि हम अपने आपसी तालमेल और हमारे समय की दिशा देने की उसकी क्षमता को बेहतर ढंग से समझ सकें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 1 अक्टूबर को रोम के पल्लियों और स्कूलों के 700 से 1000 बच्चे वैटिकन उद्यान में पोप लियो 14वें के साथ एकत्रित होंगे। ए टू द चर्च एंड नेट की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उस शाम 5 बजे वैटिकन के लूद क्रोटो में बच्चे और पोप दुनिया भर के बच्चों, परिवारों, स्कूलों और ख्रिस्त समुदायों के साथ आध्यात्मिक रूप से एकजुट होंगे। 2 दशकों से भी अधिक समय से परमधम पीठे फाउंडेशन ACN इस प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि पहली बार 1 मिलियन बच्चे रोजरी विनती करते हुए पहल 1 से 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिससे समुदायों, परिवारों और स्कूलों को अपनी पसंद का दिन चुनने का मौका मिलेगा। इस दौरान हर समुदाय शांति और एकता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में एक साथ आएंगे। 7 अक्टूबर रोजरी की माता मरियम का पर्व दिवस इस सप्ताह का चरम बिंदु होगा। बोलिवियन अमेजन के आदिवासी समुदायों से लेकर सूडान, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक और युद्ध, गरीबी एवं अस्थिरता से प्रभावित कई दूसरी जगहों की कलीसियाएं भी प्रार्थना अभियान में शामिल होंगी। जिम्बाब्वे के बुलावायो महाधर्म प्रांत में सेंट क्रिस्टोफर पल्ली 4 अक्टूबर को बच्चों को शांति के लिए प्रार्थना में शामिल होने के लिए इकट्ठा करेगी। इस साल की यह पहल पुर्तगाल के फातिमा में 3 बच्चों को माता मरियम के दिव्य दर्शन के दौरान मिले संदेश से प्रेरित है। अंत में मेरा बेदाग दिल ही जीतेगा। भाग लेने वालों को दिए गए एक निमंत्रण में CAN इंटरनेशनल के अध्यक्ष और ख्रिस्त एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल कूट कोच ने बताया कि कैसे मरियम का निष्कलंक हृदय पौत्र आत्मा के लिए पूरी तरह से खुले जीवन को दिखाता है, और उन्होंने मरियम को विश्वास, प्रार्थना और प्यार का एक उदाहरण बताया। खासकर आज की दुनिया में जब हिंसा, जुल्म, गरीबी और अस्थिरता है, यह पहल बहुत जरूरी है। अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करते और अलग अलग संस्कृति में रहने वाले बच्चों की तस्वीरें भरोसे और आशा का एक सरल लेकिन विश्वव्यापी प्रतीक है। 1 लाख बच्चे रोजरी माला विनती करते हुए पहल 2005 में वेनेजुएला में शुरू हुई थी, और यह हर महाद्वीप में बच्चों, परिवारों, पल्लियों, स्कूलों और कलीसियाई दलों के साथ एक विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क बन गई है। इटली के संत पादरे पियो के कथन ने इस पहल को प्रेरित किया है। जब 1 मिलियन बच्चे रोजरी की प्रार्थना करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। हालांकि प्रार्थना का आह्वान सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। ए टू द चर्च इन नीड ने सभी माता पिताओं, शिक्षकों, पुरोहितों, धर्म संघों, प्रचारकों और परिवारों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। ए टू द चर्च इन नीड जोर देता है कि अगर पूरी रोजरी विनती करना संभव ना हो तो कम से कम एक भेद ईमानदारी पूर्वक करने से भी इस वैश्विक प्रार्थना श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं। शांति में निवेश करना हर एक के लिए, हर जगह, हर दिन, यह संदेश तोम्बुरा यांबियो के धर्माध्यक्ष बिशप बर्नी एदवार्डो हिबोरो कुसाला का है, जिन्होंने सूडान और दक्षिणी सूडान के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के मौके पर संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। सूडान और दक्षिणी सूडान के कातिल धर्माध्यक्ष सम्मेलन के न्याय एवं शांति आयोग के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष बेर्नी एदवार्डो हिबोरो कुसाला ने विदेश एजेंसी को भेजे एक बयान में लिखा, शांति सिर्फ युद्ध न होने से कहीं अधिक है। इसके लिए न्याय, समानता, सुरक्षा, मेल मिलाप और भरोसा फिर से बनाने की हिम्मत चाहिए। हमारे लोग बहुत लंबे समय से घाव सह रहे हैं, लेकिन हमारे घाव हमारे इतिहास का हिस्सा है। शांति वह विरासत है जो हमें अपने बच्चों के लिए छोड़नी चाहिए। यह संदेश उन लोगों के अनुभव से निकला है जो संघर्ष, विस्थापन, दर्द और डर से जूझ रहे हैं, लेकिन धर्माध्यक्ष इस बात पर जोर देते हैं कि वे उम्मीद जारी रखे हैं। इसलिए वे हिंसा के शिकार लोगों, विस्थापित परिवारों, शरणार्थियों, डर में बड़े हो रहे बच्चों और उन लोगों के लिए खास प्रार्थना करने का निमंत्रण देते हैं जो अभी भी संघर्ष के घावों को झेल रहे हैं। सूडान और दक्षिण सूडान के इस नाजुक समय में धर्माध्यक्ष हिबोरा समाज के सभी लोगों, राजनीतिक नेता, नागरिक, धर्म संघी और पारंपरिक अधिकारी, महिलाओं और युवाओं को संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, हमारी विविधताएं कभी भी हिंसा का कारण ना बने। झगड़े की जगह बातचीत होनी चाहिए और जनता के अधिकारियों को आम भलाई के लिए काम करना चाहिए। उनकी अपील चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी है, जिसके लिए दोनों देश तैयारी कर रहे हैं।
धर्मदर्श कहते हैं, हर नागरिक की प्रतिष्ठा एवं अधिकारों का सम्मान किया जाए और राजनीतिक हिस्सेदारी शांतिपूर्ण और डर धमकी एवं हिंसा से मुक्त होने की अपील करते हैं। वे आगे कहते हैं, राजनीतिक असहमति से कभी भी किसी पड़ोसी को दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। अडोम्बुरा यांबियो के धर्मदर्श ने खासकर युवाओं से नफरत को अस्वीकार करने के लिए कहा है। समुदायों और विविधताओं के बीच पुल बनाने, हिंसा के बजाय शिक्षा, विश्वास, सेवा और मेल मिलाप करने की सलाह दी है। बिशप हिबोरो ने सूडान और दक्षिण सूडान के लोगों और शांति निर्माण के लिए समर्पित सभी लोगों को ईश्वर का भरोसा दिलाया है। ईश्वर दुखी लोगों को आराम दें, घायलों को चंगा करें, दुर्बलों की रक्षा करें, हमारे नेताओं को समझाएं और न्याय, मेल मिलाप एवं शांति के लिए काम करने वाले सभी लोगों को मजबूत करें। धर्मदर्श ने अंत में कहा, सूडान को शांति मिले, दक्षिण सूडान को शांति मिले, अफ्रीका को शांति मिले, आइए हम वहीं से शुरू करें जहां शांति शुरू होती है। ईश्वर हमें अपनी शांति के माध्यम बनाएं। पोप लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरित यात्रा से पहले वैटिकन मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में फ्रांस के प्रेरित राजदूत महाधर्मदर्श सेलेस्टिनो मिलियोरे ने कहा कि पोप की यात्रा से देश में ख्रिस्त धर्म की फिर से खोज और येसु ख्रिस्त में दिलचस्पी बढ़ेगी और द्विधा में पड़े यूरोप को एक मजबूत संदेश जाएगा। एक ख्रिस्त जीवन की खूबसूरती को फिर से खोजा जा रहा है, एक ऐसा ख्रिस्त जीवन जो ना तो सस्ता है ना ही कमजोर, बल्कि जिससे उसकी पूरी जड़ एवं गहराई के साथ अपनाया गया है। वैटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में फ्रांस

में मदद करेगी और इन संकेतों को एक गहरी एवं स्थायी कार्तिक जागृति में बदल देगी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: और मृत का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा।
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। वैटिकन द्वितीय महाधर्म सभा के प्रेरितिक धर्म सिद्धांत गाउडियम एट स्पेस की चर्चा करते हुए आज हम इसके तृतीय अध्याय के प्रथम भाग में आते हैं, जिसका एक दिलचस्प शीर्षक है, संपूर्ण दुनिया में मानव के क्रियाकलाप। हमारे लिए यहाँ मुख्य सवाल यह है, दुनिया में मानव के क्रियाकलाप का मूल्य क्या है, और इसलिए तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास हमारे लिए क्या अर्थ रखते हैं। हम इस बात को याद कर सकते हैं कि वैटिकन महासभा की समाप्ति के चार वर्षों से कम समय के अंतराल में 20 से 21 जुलाई सन 1969 की रात को मानव ने पहली बार चंद्रमा में अपने कदम रखे। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि ईश्वर के प्रति रूप में बनाया गया मानव प्रगति का वाहक है। अपनी स्वतंत्रता और बौद्धिक क्षमता में वह अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, जिसके द्वारा वह एक पूरे समाज को आगे ले चलता है। हम इसे एक के बाद एक पीढ़ियों के रहन सहन की स्थितियों में हुए सुधारों पर चिंतन करते हुए सहज ही देख सकते हैं। वास्तव में दस्तावेज हमें कहता है, बहुत सारी लाभदायक चीजें जिनकी चाह हमने की, विशेषकर दिव्य शक्ति से मानव ने अपनी कोशिश से उन्हें अपने लिए हासिल कर लिया है। यही कारण है कुछ विचारकों ने वैज्ञानिक खोज और तकनीकी प्रगति को इस भांति प्रस्तुत किया है, मानो वे कुछ ऐसी चीजें हों जो ईश्वर से मनुष्य के संबंध को कमजोर बनाता हो, इस हद तक कि यह छिछले जान पड़ती हो, या यहाँ तक कि वे ख्रिस्ती विश्वास का विरोध करते हो। और इस जीवन दर्शन ने समकालीन मानव में एक परिवर्तन लाया है, जहाँ वह पहले के युगों की अपेक्षा आज की दुनिया को दूसरी निगाहों से देखता है। ऐसे पूर्व ग्रह विशेषकर पश्चिमी संस्कृति में मुख्य रूप से व्याप्त हैं, जिसने ख्रिस्तीय प्रकटीकरण से अपने संबंध को खो दिया है। ख्रिस्तीयता उपरांत मानववादी विचारकों ने मानव और ईश्वर को गलत तरीके से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी स्वरूप प्रस्तुत किया है। ऐसा माना जाता है कि अपने ज्ञान, अपनी स्वतंत्रता और अपनी प्रगति को साबित करने के लिए मानव को चाहिए कि वह खुद को ईश्वर से मुक्त करे। यद्यपि अंततः कोई ईश्वर के संबंध से अपने को अलग करता, तो कोई भी व्यक्ति मानव के रूप में अपने से परे जाने के मूल्य की संभावना को सुदृढ़ करने की योग्यता खो देता है। यह नास्तिक मानवतावाद की त्रासदी है, जिसकी उचित व्याख्या एक प्रसिद्ध ईश शास्त्री हेनरी दे ल्यूबाक ने द्वितीय वैटिकन महासभा के दौरान की। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि धर्म सभा इस संबंध में एक स्पष्ट उत्तर देना चाहती है। गाउडियम एट स्पेस कहता है ख्रिस्तीय सही मायने में यह मान सकते हैं कि अपनी मेहनत में वे सृष्टिकर्ता की रचना को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने साथी मनुष्यों की भलाई हेतु कार्य कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत मेहनत से इतिहास में ईश्वर की योजना को साकार करने में योगदान दे रहे हैं। वास्तव में धर्म सिद्धांत आगे कहता है, मानव अपनी प्रतिभा और शक्ति से जो काम करता है उन्हें ईश्वर की शक्ति के खिलाफ या मानव को ईश्वर का प्रतिद्वंदी मानने के बजाय ख्रिस्तीय यह मानते हैं कि मानव जाति की सफलताएं ईश्वर की कृपा और उनकी रहस्यमयी योजना के फूलने फलने का ही एक संकेत है। असल में ईश्वर ने नर और नारियों के हाथों में एक ऐसी रचना सौंपी है जो अब भी विकास की यात्रा पर है, यानी वह बढ़ रही है और विकसित हो रही है ताकि वे अपनी समझदारी भरे कामों से उसे पूर्णता तक पहुंचा सकें। संत पापा लियो ने कहा कि यहाँ हम शरीर धारण के महत्वपूर्ण रहस्य को पाते हैं। मानवता और उसके कार्य विकास और श्रेष्ठ प्राणियों की स्वतंत्रता ईश्वर से मिलन पर ना तो उसमें समा जाती है और ना ही खत्म होती है, बल्कि वे पूरी तरह से मसीह में समाहित हो जाते हैं।
2: Infatti, è in lui che essa trova piena verità e libertà.
1: वे स्वतंत्र और सक्रिय रूप में ख्रिस्त में बनी रहती हैं। असल में यह वे हैं जिनमें वे अपनी पूर्ण सच्चाई और स्वतंत्रता को प्राप्त करती हैं। उससे भी बढ़कर यूखारिस्तीय समारोह में मानव की मेहनत का फल रोटी और दाखरस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वे हर दिन वेदी में ख्रिस्त के शरीर और रक्त में परिणत होने हेतु अर्पित किए जाते हैं। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा, हम एक महत्वपूर्ण सच्चाई की अभिव्यक्ति को पाते हैं। ईश्वर से मिलन हेतु मानव को चाहिए कि वह इस पृथ्वी पर अपने कार्यों का परित्याग ना करे, बल्कि अपने बुलाहट को पूर्ण रूपेण जिए, अपने प्रतिदिन के कार्यों को निष्ठा और पवित्रता में करता जाए। ख्रिस्तीय दूसरे लोगों की भांति अपने में मानव के शहर का निर्माण करने में संलग्न है, सारी चीजों को पूर्णता की ओर लेने और ईश्वर से मिलन तथा उन लोगों को इस अंतिम लक्ष्य की याद दिलाते हैं जिनके संग वे प्रगति विज्ञान और जीवन का सफर साझा करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि पृथ्वी का विकास निश्चित रूप से ईश्वर के राज्य के विकास की तुलना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यद्यपि धर्म सभा इस बात को सुनिश्चित करती है कि जिस हद तक पहली चीज मानव समाज को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में योगदान दे सकती है, उसी हद तक वह ईश्वरीय राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी प्रकृति के सभी फल और प्रयास हम उन्हें पुनः प्राप्त करेंगे, लेकिन वे दाग धब्बों से मुक्त चमकाया और पूरी तरह बदला हुआ रहेगा। अंततः हम इस बात की याद करें कि सच्चे मानवीय विकास के लिए अर्थात पूर्ण मानव विकास और सभों का हित तकनीकी और वैज्ञानिक विकास को प्रेम से प्रेरित और संचालित होने की मांग करती है।
2: Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti.
1: केवल ऐसा करने के द्वारा यह मानवीय सम्मान की सेवा और सभों के जीवन विकास हेतु उपयोगी हो पाएगा, विशेषकर वे जो अति जरूरत की स्थिति में हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, द्वितीय वैटिकन महासभा हमें ज्ञान की रोटी को एक दूसरे के संग साझा करने और उसे कैसे करना है उसके लिए निमंत्रण देती है, जिससे हर व्यक्ति और हर जन अपनी क्षमताओं का विकास कर सके और ईश्वर की सहायता के संग मिलकर हम सभी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज बुधवार 23 सितंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में आम दर्शन समारोह के अंत में इटाली भाषी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने प्रवासियों और शरणार्थियों के 112वें विश्व दिवस के अवसर पर दिल से अपील की। यह दिवस आने वाले रविवार 27 सितंबर को मनाया जाएगा। उनके यह अपील इसलिए भी भावुक थी क्योंकि उन्होंने इसमें उन हजार कमजोर बच्चों और किशोरों के दुख दर्द पर ध्यान दिलाया जिन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। वे अक्सर पलायन के रास्तों पर असहनीय हिंसा, दुख, यातना, शोषण और सदमे वाले हालात के शिकार होते हैं। ऐसे रास्ते जहां अक्सर उनकी जान भी चली जाती है। इनमें से कोई एक बच्चा भी प्रवासियों और शरणार्थियों के 112वें विश्व दिवस के आयोजन का मुख्य केंद्र है। इस आयोजन का मकसद दुनिया भर में हो रहे पलायन के दौरान सबसे कमजोर लोगों यानी नाबालिगों की ओर सबका ध्यान खींचना है। उनकी गरिमा को अक्सर कुचला जाता है। न सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में खतरनाक सफर करने के दौरान उन्हें तकलीफों और हिंसा को झेलना पड़ता है बल्कि मंजिल पहुंचने के बाद भी उन्हें अक्सर ठुकरा दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है और हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। संत पापा लियो 14वें ने 14 अगस्त को जारी प्रवासियों और शरणार्थियों के विश्व दिवस के संदेश में सुरक्षा अधिकारों की पूरी हिफाजत और उनकी गरिमा व सांस्कृतिक पहचान के सम्मान की बात कही थी। इन उपायों का मकसद कट्टरपंथ की ओर बढ़ने के अतिरिक्त खतरे को रोकना है। संत पापा ने दस्तावेज में कहा, आज विस्थापित नाबालिगों की पुकार ईश्वर तक पहुँच रही है। उन्होंने संस्थाओं से परिवारों को फिर से मिलाने और वापस भेजे जाने से होने वाले सदमे को रोकने का आग्रह किया। यह संदेश नजरिया बदलने की तत्काल जरूरत पर जोर देता है जिसमें हर बच्चे और किशोर की सुरक्षा व गरिमा को केंद्र में रखा जाए और बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को फिर से दोहराया जाए। उधर गाजा में 3 साल की बमबारी से लगभग पूरी तरह तबाह हो चुके शहरी इलाके में स्कूल की घंटी की आवाज किसी चमत्कार जैसी लगती है। मंगलवार 22 सितंबर को गाजा में यरूशलेम के लैटिन धर्म प्रांतीय स्कूल, जो पवित्र परिवार कैथोलिक पल्ली से जुड़ा है, आधिकारिक तौर पर अपने दरवाजे फिर से खोल दिया है जिसमें कुल 1005 छात्रों का स्वागत है। किंडरगार्टन में 2 से 5 साल के बच्चों से लेकर प्राथमिक और मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के छात्र सभी बिल्डिंग की दहलीज पार कर चुके हैं जिससे पूरे ख्रिस्तीय समुदाय को उम्मीद और सामान्य हालात की एक किरण मिली है। गाजा के पल्ली पुरोहित ने उम्मीद जताई कि यह जगह ऐसी बनेगी जहां समुदाय के लोगों के बीच प्यार, आपसी सम्मान और एक दूसरे के दुख दर्द को समझने और ठीक होने की भावना बढ़ेगी। उधर यमन में रात भर धमाके हुए। देश के पश्चिमी तट पर स्थित 23 प्रांत में धमाकों की आवाजें सुनाई देने के अलावा पास ही अलमुखा के ऊपर सऊदी अरब का एक टोही ड्रोन भी मार गिराया गया। इसके अलावा कल जेद्दा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सऊदी किंग सलमान ने मक्का, जो इस्लाम का पवित्र शहर है, पर हमला करने की हूती विद्रोहियों की हालिया कोशिश की निंदा की और इसे इस्लामी स्थलों की पवित्रता के खिलाफ एक शर्मनाक अपराध बतलाया। हुर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और बाब अल मंडेप में हुई घटनाओं के बाद ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के लिए अहम पूर्व पश्चिम पाइपलाइन को बार बार हुती हमलों के कारण 13 सितंबर को बंद कर दिया गया था। अब कम क्षमता के साथ इसका संचालन फिर से शुरू हो गया है परंतु सामान्य कामकाज बहाल होने में कई हफ्ते लगेंगे। इस बीच विद्रोही अपने हमले तेज कर रहे हैं और ताइज और लाहिज प्रांतों के बीच रणनीतिक रूप से अहम ऊंचे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लाल सागर के तट का संपर्क यहूदी समर्थित बाकी इलाकों से काटा जा सके। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब अमेरिकी समर्थन पर निर्भर नहीं रह सकता, लेकिन उसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बर्नहम का समर्थन मिला है।
हाल के दिनों में हालात बिगड़ने के बाद यमन अब टूटने की कगार पर है। 12 साल की लड़ाई की वजह से लगभग 5 मिलियन लोगों के अलावा 1 लाख लोग देश के अंदर ही बेघर हो गए हैं। उधर मध्य पूर्व की सरकारें इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारी कर रही हैं। ईरान का दावा है कि उसे ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि अमेरिका इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ फिर से बमबारी करने की योजना बना रहा है। ये चिंताएं तब और बढ़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति कैंप डेविड की सप्ताहांत यात्रा से जल्दी लौट आए। उनके कार्यक्रम में इस बदलाव की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई। इसी बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा को लेकर एक नया अलर्ट जारी किया। ईरान के इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड कोर ने चेतावनी दी है कि देश पर किसी भी हमले का जवाब बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जवाबी कार्रवाई हिंद महासागर में तैनात अमेरिकी नौसेना बलों तक भी हो सकती है। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर किए गए हमलों के बाद बयानों और अटकलों के दौर तेज हो गए हैं, जिससे इलाके में बड़े टकराव का डर पैदा हो गया है। इस बीच रॉयटर्स और जापान की क्योडो न्यूज की अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि अगर अमेरिका अपना सैन्य दबाव कम करे और ईरानी बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां हटा ले तो वह 7 दिनों के भीतर हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल देगा। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए अमेरिका तक पहले ही पहुँचाया जा चुका है। हुर्मुज जलडमरू मध्य बढ़ते तनाव के केंद्र में रहा है क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन पर किसी भी संघर्ष के संभावित प्रभाव पर चिंताएं बढ़ रही हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। वैटिकन द्वितीय महाधर्म सभा के प्रेरितिक धर्म सिद्धांत गाउडियम एट स्पेस की चर्चा करते हुए आज हम इसके तृतीय अध्याय के प्रथम भाग में आते हैं, जिसका एक दिलचस्प शीर्षक है संपूर्ण

0: दुनिया में मानव के क्रियाकलाप हमारे लिए यहाँ मुख्य सवाल यह है, दुनिया में मानव के क्रियाकलाप का मूल्य क्या है, और इसलिए तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास हमारे लिए क्या अर्थ रखते हैं। हम इस बात को याद कर सकते हैं कि वैटिकन महासभा की समाप्ति के 4 वर्षों से कम समय के अंतराल में 20 से 21 जुलाई सन 1969 की रात को मानव ने पहली बार चंद्रमा में अपने कदम रखे। संत पापालियो चौदहवें ने कहा कि ईश्वर के प्रति रूप में बनाया गया मानव प्रगति का वाहक है। अपनी स्वतंत्रता और बौद्धिक क्षमता में वह अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, जिसके द्वारा वह एक पूरे समाज को आगे ले चलता है। हम इसे एक के बाद एक पीढ़ियों के रहन सहन की स्थितियों में हुए सुधारों पर चिंतन करते हुए सहज ही देख सकते हैं। वास्तव में दस्तावेज हमें कहता है बहुत सारी लाभदायक चीजें जिनकी चाह हमने की, विशेषकर दिव्य शक्ति से मानव ने अपनी कोशिश से उन्हें अपने लिए हासिल कर लिया है। यही कारण है कुछ विचारकों ने वैज्ञानिक खोज और तकनीकी प्रगति को इस भांति प्रस्तुत किया है मानो वे कुछ ऐसी चीजें हों जो ईश्वर से मनुष्य के संबंध को कमजोर बनाता हो, इस हद तक कि यह छिछले जान पड़ती हो, या यहाँ तक कि वे ख्रिस्तीय विश्वास का विरोध करते हो। और इस जीवन दर्शन ने समकालीन मानव में एक परिवर्तन लाया है, जहाँ वह पहले के युगों की अपेक्षा आज की दुनिया को दूसरी निगाहों से देखता है। ऐसे पूर्व ग्रह विशेषकर पश्चिमी संस्कृति में मुख्य रूप से व्याप्त है, जिसने ख्रिस्तीय प्रकटीकरण से अपने संबंध को खो दिया है। ख्रिस्तीयता उपरांत मानववादी विचारकों ने मानव और ईश्वर को गलत तरीके से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी स्वरूप प्रस्तुत किया है। ऐसा माना जाता है कि अपने ज्ञान, अपनी स्वतंत्रता और अपनी प्रगति को साबित करने के लिए मानव को चाहिए कि वह खुद को ईश्वर से मुक्त करे। यद्यपि अंततः कोई ईश्वर के संबंध से अपने को अलग करता तो कोई भी व्यक्ति मानव के रूप में अपने से परे जाने के मूल्य की संभावना को सुदृढ़ करने की योग्यता खो देता है। यह नास्तिक मानवतावाद की त्रासदी है, जिसकी उचित व्याख्या एक प्रसिद्ध ईश शास्त्री हेनरी दे ल्यूबाक ने द्वितीय वैटिकन महासभा के दौरान की। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि धर्म सभा इस संबंध में एक स्पष्ट उत्तर देना चाहती है। गाउडियम एट स्पेस कहता है, ख्रिस्तीय सही मायने में यह मान सकते हैं कि अपनी मेहनत में वे सृष्टिकर्ता के रचना को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने साथी मनुष्यों की भलाई हेतु कार्य कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत मेहनत से इतिहास में ईश्वर की योजना को साकार करने में योगदान दे रहे हैं। वास्तव में धर्म सिद्धांत आगे कहता है, मानव अपनी प्रतिभा और शक्ति से जो काम करता है उन्हें ईश्वर की शक्ति के खिलाफ या मानव को ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी मानने की बजाय ख्रिस्तीय यह मानते हैं कि मानव जाति की सफलताएं ईश्वर की कृपा और उनकी रहस्यमयी योजना के फूलने फलने का ही एक संकेत है। असल में ईश्वर ने नर और नारियों के हाथों में एक ऐसी रचना सौंपी है जो अब भी विकास की यात्रा पर है, यानी वह बढ़ रही है और विकसित हो रही है, ताकि वे अपनी समझदारी भरे कामों से उसे पूर्णता तक पहुंचा सकें। संत पापा लियो ने कहा कि यहां हम शरीर धारण के महत्वपूर्ण रहस्य को पाते हैं। मानवता और उसके कार्य, विकास और श्रेष्ठ प्राणियों की स्वतंत्रता ईश्वर से मिलन पर ना तो उसमें समा जाती है और ना ही खत्म होती है, बल्कि वे पूरी तरह से मसीह में समाहित हो जाते हैं।
1: Infatti, è in lui che essa trova piena verità e libertà.
0: वे स्वतंत्र और सक्रिय रूप में ख्रिस्त में बनी रहती हैं। असल में यह वे हैं जिनमें वे अपनी पूर्ण सच्चाई और स्वतंत्रता को प्राप्त करती हैं। उससे भी बढ़कर यूखारिस्तीय समारोह में मानव के मेहनत का फल रोटी और दाखरस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वे हर दिन वेदी में ख्रिस्त के शरीर और रक्त में परिणत होने हेतु अर्पित किए जाते हैं। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा, हम एक महत्वपूर्ण सच्चाई की अभिव्यक्ति को पाते हैं। ईश्वर से मिलन हेतु मानव को चाहिए कि वह इस पृथ्वी पर अपने कार्यों का परित्याग ना करे, बल्कि अपने बुलाहट को पूर्ण रूपेण जिए, अपने प्रतिदिन के कार्यों को निष्ठा और पवित्रता में करता जाए। ख्रिस्तीय दूसरे लोगों की भांति अपने में मानव के शहर का निर्माण करने में संलग्न है, सारी चीजों को पूर्णता की ओर लेने और ईश्वर से मिलन तथा उन लोगों को इस अंतिम लक्ष्य की याद दिलाते हैं जिनके संग वे प्रगति, विज्ञान और जीवन का सफर साझा करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि पृथ्वी का विकास निश्चित रूप से ईश्वर के राज्य के विकास की तुलना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यद्यपि धर्म सभा इस बात को सुनिश्चित करती है कि जिस हद तक पहली चीज मानव समाज को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में योगदान दे सकती है, उसी हद तक वह ईश्वरीय राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी प्रकृति के सभी फल और प्रयास हम उन्हें पुनः प्राप्त करेंगे, लेकिन वे दाग धब्बों से मुक्त, चमकाया और पूरी तरह बदला हुआ रहेगा। अंततः हम इस बात की याद करें कि सच्चे मानवीय विकास के लिए अर्थात पूर्ण मानव विकास और सबों का हित, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास को प्रेम से प्रेरित और संचालित होने की मांग करती है।
1: Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti.
0: केवल ऐसा करने के द्वारा यह मानवीय सम्मान की सेवा और सबों के जीवन विकास हेतु उपयोगी हो पाएगा, विशेषकर वे जो अति जरूरत की स्थिति में हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, द्वितीय वैटिकन महासभा हमें ज्ञान की रोटी को एक दूसरे के संग साझा करने और उसे कैसे करना है उसके लिए निमंत्रण देती है, जिससे हर व्यक्ति और हर जन अपनी क्षमताओं का विकास कर सके और ईश्वर की सहायता के संग मिलकर हम सभी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज बुधवार 23 सितंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में आम दर्शन समारोह के अंत में इटाली भाषी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने प्रवासियों और शरणार्थियों के 112वें विश्व दिवस के अवसर पर दिल से अपील की। यह दिवस आने वाले रविवार 27 सितंबर को मनाया जाएगा। उनके यह अपील इसलिए भी भावुक थी क्योंकि उन्होंने इसमें उन हजार कमजोर बच्चों और किशोरों के दुख दर्द पर ध्यान दिलाया जिन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। वे अक्सर पलायन के रास्तों पर असहनीय हिंसा, दुख, यातना, शोषण और सदमे वाले हालात के शिकार होते हैं। ऐसे रास्ते जहां अक्सर उनकी जान भी चली जाती है। इनमें से कोई एक बच्चा भी प्रवासियों और शरणार्थियों के 112वें विश्व दिवस के आयोजन का मुख्य केंद्र है। इस आयोजन का मकसद दुनिया भर में हो रहे पलायन के दौरान सबसे कमजोर लोगों यानी नाबालिगों की ओर सबका ध्यान खींचना है। उनकी गरिमा को अक्सर कुचला जाता है। न सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में खतरनाक सफर करने के दौरान उन्हें तकलीफों और हिंसा को झेलना पड़ता है बल्कि मंजिल पहुंचने के बाद भी उन्हें अक्सर ठुकरा दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है और हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। संत पापा लियो 14वें ने 14 अगस्त को जारी प्रवासियों और शरणार्थियों के विश्व दिवस के संदेश में सुरक्षा अधिकारों की पूरी हिफाजत और उनकी गरिमा व सांस्कृतिक पहचान के सम्मान की बात कही थी। इन उपायों का मकसद कट्टरपंथ की ओर बढ़ने के अतिरिक्त खतरे को रोकना है। संत पापा ने दस्तावेज में कहा, आज विस्थापित नाबालिगों की पुकार ईश्वर तक पहुंच रही है। उन्होंने संस्थाओं से परिवारों को फिर से मिलाने और वापस भेजे जाने से होने वाले सदमे को रोकने का आग्रह किया। यह संदेश नजरिया बदलने की तत्काल जरूरत पर जोर देता है जिसमें हर बच्चे और किशोर की सुरक्षा व गरिमा को केंद्र में रखा जाए और बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को फिर से दोहराया जाए। उधर गाजा में 3 साल की बमबारी से लगभग पूरी तरह तबाह हो चुके शहरी इलाके में स्कूल की घंटी की आवाज किसी चमत्कार जैसी लगती है। मंगलवार 22 सितंबर को गाजा में यरूशलेम के लैटिन धर्म प्रांतीय स्कूल, जो पवित्र परिवार कैथोलिक पल्ली से जुड़ा है, आधिकारिक तौर पर अपने दरवाजे फिर से खोल दिया है जिसमें कुल 1005 छात्रों का स्वागत है। किंडरगार्टन में 2 से 5 साल के बच्चों से लेकर प्राथमिक और मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के छात्र सभी बिल्डिंग की दहलीज पार कर चुके हैं जिससे पूरे ख्रिस्तीय समुदाय को उम्मीद और सामान्य हालात की एक किरण मिली है। गाजा के पल्ली पुरोहित ने उम्मीद जताई कि यह जगह ऐसी बनेगी जहां समुदाय के लोगों के बीच प्यार, आपसी सम्मान और एक दूसरे के दुख दर्द को समझने और ठीक होने की भावना बढ़ेगी। उधर यमन में रात भर धमाके हुए। देश के पश्चिमी तट पर स्थित 23 प्रांत में धमाकों की आवाजें सुनाई देने के अलावा पास ही अलमुखा के ऊपर सऊदी अरब का एक टोही ड्रोन भी मार गिराया गया। इसके अलावा कल जेद्दा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सऊदी किंग सलमान ने मक्का, जो इस्लाम का पवित्र शहर है, पर हमला करने की हूती विद्रोहियों की हालिया कोशिश की निंदा की और इसे इस्लामी स्थलों की पवित्रता के खिलाफ एक शर्मनाक अपराध बतलाया। हुर्मुज जलदमरू मध्य के बंद होने और बाब अल मंडेप में हुई घटनाओं के बाद ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के लिए अहम पूर्व पश्चिम पाइपलाइन को बार बार हुती हमलों के कारण 13 सितंबर को बंद कर दिया गया था। अब कम क्षमता के साथ इसका संचालन फिर से शुरू हो गया है परंतु सामान्य कामकाज बहाल होने में कई हफ्ते लगेंगे। इस बीच विद्रोही अपने हमले तेज कर रहे हैं और ताइज और लाइज प्रांतों के बीच रणनीतिक रूप से अहम ऊंचे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लाल सागर के तट का संपर्क यहूदी समर्थित बाकी इलाकों से काटा जा सके। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब अमेरिकी समर्थन पर निर्भर नहीं रह सकता, लेकिन उसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बर्नहाम का समर्थन मिला है।
हाल के दिनों में हालात बिगड़ने के बाद यमन अब टूटने की कगार पर है। 12 साल की लड़ाई की वजह से लगभग 5 मिलियन लोगों के अलावा 1 लाख लोग देश के अंदर ही बेघर हो गए हैं। उधर मध्य पूर्व की सरकारें इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारी कर रही हैं। ईरान का दावा है कि उसे ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि अमेरिका इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ फिर से बमबारी करने की योजना बना रहा है। ये चिंताएं तब और बढ़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति कैंप डेविड की सप्ताहांत यात्रा से जल्दी लौट आए। उनके कार्यक्रम में इस बदलाव की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई। इसी बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा को लेकर एक नया अलर्ट जारी किया। ईरान के इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड कोर ने चेतावनी दी है कि देश पर किसी भी हमले का जवाब बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जवाबी कार्रवाई हिंद महासागर में तैनात अमेरिकी नौसेना बलों तक भी हो सकती है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर किए गए हमलों के बाद बयानों और अटकलों के दौर तेज हो गए हैं, जिससे इलाके में बड़े टकराव का डर पैदा हो गया है। इस बीच रॉयटर्स और जापान की क्योडो न्यूज की अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि अगर अमेरिका अपना सैन्य दबाव कम करे और ईरानी बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां हटा ले तो वह 7 दिनों के भीतर हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल देगा। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए अमेरिका तक पहले ही पहुँचाया जा चुका है। हुर्मुज जलडमरू मध्य बढ़ते तनाव के केंद्र में रहा है क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन पर किसी भी संघर्ष के संभावित प्रभाव पर चिंताएं बढ़ रही हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।